वो अब सोचिए, अरे प्रिस्व विनरय गुणोतिन शोषण चिरंति से ओतो कुस्मारय स्मावें पेंस रिंतव कैनें नो विनाने वोल्टो वे मेप शोषरय गुण उना शोषण योचन अपस्तोलोस ने मेप से पियंते